转移，可丁是说爸爸这么会打理。इसका साथ ही अगले खबर इतने बिहान 9 बजे को खबर लेकर आऊँ प्रार्दिक मित्र अभिकल्लाई धन्यवाद दिदै समाचार कक्षका संपूर्ण सहकर्मी सहित म रेख बिदा हुन्छु नमस्कार।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: भिभो, सीजी, इन्टेक्स, एमआई, मैजु, कलर्स, लाभा, एमटेक, टेक्नो, आइटेल ब्रान्ड का मोबाइल घड़ी, साउंड सिस्टम, डिसोम, पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइनु का साथ ही पुरानो मोबाइल लिएर नया मोबाइल पनि साटिन्छ।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंग बेसी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगई प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ। संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9813180307।

0: गठिया अर्थोराइटिस को उपचार
1: सुगर ब्लड प्रेशर थायराइड कोलेस्ट्रोल महिला तथा पुरुष में देखिने यौन समस्या यौन असंतुष्टि शीघ्र स्खलन धातु तथा श्वेत प्रदल स्त्री रोग बांझोपना तथा निसंतान आदि को उपचार
0: जंडिस निमोनिया हेपाटाइटिस बी तथा सी पत्थरी किडनी को रोग कलेजो को रोग आदि को उपचार
1: दम खोकी मेडिकल फेल छाती को दाग माइग्रेन टाउ को दुखने पिनास गैस्ट्रिक अल्सर नाक कान घाटी आँखा को रोगहरूको उपचार
0: छाला का रोगहरू सेतो दुबी चाया पोतो डन्डीफोर दाद एलर्जी खटिरा निको नभएका घाउहरूको सफल उपचार
1: थप जानकारीको लागि सम्पर्क सोलुसन आयुर्वेदा पायल्स फिस्टुला नसा तथा हार्जोमी उपचार केन्द्र नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ बेसी होटल जनजीविका अगाडि
0: फोन नम्बर 0105212248 मोबाइल नम्बर 9841414984
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: थोक लेन ढुक्को हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: थोक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज